उनकी शक्लें और शौक लग गया उनको कि बच्चा बोल रहा है और कह रहा है कि मेरी अपनी माँ की पाकीज़गी गवाही दे रहा है, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इस मकाम वाले ईसा को अल्लाह क्या कहेगा, क्या सूरह मायदा के आखिर में, जिस दिन अल्लाह ईसा से सवाल करेगा, कहेगा तूने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो। हजरत ईसा इंतहाई अदब के साथ क्या कहेंगे, परवरदिगार मैं इन्हें वो बात कैसे कर सकता था जिसका मुझे हक ही नहीं था, मैंने तो इनको वही कुछ कहा जो तूने हुक्म दिया था। मुती और फरमा बरदार और मुअद्दब, और फिर और अदब की आगे आगे देखे किस कदर अदब है, कह रहे कि अगर मैंने कहा हो तो तू बेहतर जानता है, यानी मैं जो बात कर रहा भी हूं इसमें भी तेरा इल्म मुझसे ज्यादा हो सकता है, मेरा इल्म नाकिस। ये अदब है अल्लाह, यहां पे क्या अशर किया, यहां पे जनाब किस्सा गोई हो रही है, अजीब फिक्शंस किस्म की बनाई हुई है कि जनाब कई दिन हो गए जब नीचे गए वो हजरत अली ने तलवार मारी मरब के सर पे, वो मरब का जो है वो सर टूटा, फिर मरब कटा, फिर वो ज़मीन पे लगी, फिर ज़मीन कटती जा रही थी, फिर अल्लाह ने कहा कि जिब्राइल जा पर नीचे दे और तलवार को रोक ताकि ज़मीन काट के दो टुकड़े ना हो जाए, और वो ज़मीन उसने पर रखा, मौला की तलवार लगी, उसका पर जो है ज़ख्मी हो गया, और अब अल्लाह ऊपर वेट कर रहे हैं कि जिब्राइल कहाँ चले। कुरान कह रहा है उस ज़र्रा बराबर भी कोई चीज़ उसके इल्म से गायब नहीं। जाकिर साहब ये जाकिर नहीं होते, जो हकीकी जाकिर हैं उनके हाथ चूमने चाहिए, जो हकीकी जाकिर हैं जिनसे अल्लाह ये नौकरी ले रहा है अहले बैत की खिदमत। जो झूठ गढ़ते हैं माल कमाने के लिए वो अल्लाह पर तोहमत लगा रहा है। क्या कह रहा है, जब काफ़ी दिन हो गए तो जिब्राइल ऊपर आए, अल्लाह ने कहा किधर रह गए थे तुम, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह, जिस कौम का अल्लाह इस तरह हो उसका दीन कैसा होगा। फरमाया कि तुम कहते हो उसका बेटा है, वो जो चाहे जब इरादा करता है कोई काम करने का, फइन्नमा, ये इन्नमा जैसे हम कहते हैं ना मुझे जरूरत ही नहीं, मैं कहता हूँ बस चुटकी बजाते हो जाते, ये इन्नमा वो वाला बस, उससे सिर्फ वो कहता है कौन, और ये कौन भी समझाने के लिए, वो इरादा करता है बस, उसके इरादे के नतीजे में। आपको अगर अपने जहन में तसव्वुर करना हो, इस वक्त मसलन अपने घर की तस्वीर अपने जहन में तसव्वुर करनी हो, आपको कहना पड़ेगा कौन, आप सिर्फ तवज्जो करेंगे हो जाएगा। अल्लाह सिर्फ तवज्जो करता है, इरादा करता है, और ये तवज्जो करना भी ये लफ्ज़ नाकिस है, हम खुदा के ज़ात को नहीं एक्सप्लेन कर सकते, हमारे लफ्ज़ हैं और हमारे लफ्ज़ नाकिस हैं। तवज्जो का मतलब ये होता है तवज्जो होने का पहले तवज्जो नहीं थी, अल्लाह ऐसा नहीं है, लेकिन मजबूरी में फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पड़ते। वो सिर्फ इरादा करता है और चीज़ हो जाती, उसे कुछ भी तरद्दुद और मेहनतें नहीं करनी पड़ती, ना किसी से हेल्प लेनी पड़ती है। वइदा कदा अमरन फइन्नमा यकूलु लहू कुन फयकून, जब वो किसी अमर का इरादा कर लेता है, अमर यानी चीज़, तो कहता है हो जा तो वो हो जाती है, बन जाती है। वकाल अल्लज़ीन ला यअलमून लौला युकल्लिमुना अल्लाहु अव तातीना आया, और बेइल्म लोग कहते हैं अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, आप में कौन से सुरखाब के पर लगे हों, हमारी कौन सी नाक बह रही है, अगर अल्लाह ने हमारी हिदायत ही करनी है, आपसे कर रहे हैं ना बात, हमसे भी कर रहे। तंज करते थे, यानी आप झूठ बोल रहे हैं, बोहतान लगा रहे, ठीक है, अवाम को गुमराह करने के लिए इस किस्म की बातें करते थे कि अल्लाह हिदायत चाहता है, इससे बात की है ना, तो ये एक दफ़ा अल्लाह से कह दे इनकी बात मानता है, इनका अल्लाह ना बात मानता है, एक दफ़ा हमसे बात कर ले हम ही मान लें। जाहिल कहते हैं, न जानने वाले कहते हैं अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता और हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती, या जैसे कुरान कहता है हम पर कुरान क्यों नहीं नाजिल होता, हमें कोई मौजदा क्यों नहीं अता होता। कदालिक कौल अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इनसे पहले लोग भी इसी तरह की बात कर चुके, यानी ये कोई नया नहीं इन्होंने ईजाद किया, पहले भी जो अम्बिया को तंग करने वाला तबका था वो ऐसी ही बातें किया करता था। قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, क्या ज़बरदस्त हिदायत है कि हम तुम्हें बात, अल्लाह तुम्हें बात बता रहा है, फरमा रहा है कि हम यकीनन, यकीन जो हमारी बातों पे यकीन रखते हैं उनके लिए हमने आयात बयान कर दी, उनके लिए वाजे कर दिया कि मरीज लोगों की हरकतें कैसी होती हैं और ईमान लाने वालों की हरकत कैसी होती, कैसे रवैये होते हैं दोनों के।